FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब जीवन के मार्ग कठिन लगने लगते हैं, जब मन विचलित होने लगता है, तब सतनाम का स्मरण करने से ही मन को वह आधार मिलता है जो हर दुख हर भ्रम को दूर करता है।

हर बार प्रभु से शिकायत ना करें, उसका शुक्रिया करें, क्योंकि आपके पास वो सब है जो बहुत से लोगों के नसीब में नहीं।

जब मन घबराए, जब दुखों का बोझ भारी लगे, तब प्रभु का स्मरण ही हमें अंदर से मजबूत बनाता है।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। निर्माण है सतीश भाटिया का और प्रस्तुति श्रीकांत परगांवकर की।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। शाम 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:30। शाम 6:20 पर कार्यक्रम गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवद गीता के 3rd अध्याय से श्लोक 28-30 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर विशंबर दास की। किसान भाई कार्यक्रम अन्नदाता सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार। कार्यक्रम जय जवान का समय रहेगा शाम 7:30। गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर गुलदस्ता और सुबह 9:30 पर स्वरांजलि। कुछ बातें कुछ गीत सुनिएगा शाम 8 बजे। सुबह 7:40 का समय रहेगा हरियाणवी लोक संगीत के कार्यक्रम बाजय नगाड़ा का। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनिएगा सुबह 8:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। व्हाट्सएप पर आधारित

फिल्म संगीत सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें में रात 10 बजे। शाम 5 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, गुमशुदा व मृतक सूचना। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:45 से 10 बजे तक, दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 9:15 से 10 बजे तक।

कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय संबंधं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च संबंधाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार संधिभिः सह सद्यः एव संपन्न व्यापार संधिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पंचमे अंतिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरं आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परंपरायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे संपूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् संपर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73,78,179,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the PM's visit would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the third India-Nordic summit. This is the final leg of his five-nation tour. Earlier yesterday, India-Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
4: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. The West Bengal government has notified the Annapurna Yojana to provide assured monthly financial assistance of 3,000 rupees to women for the socio-economic upliftment. The scheme introduced by the Department of Women and Child Development and Social Welfare will come into effect from the 1st of next month. Under the scheme, the financial assistance will be transferred directly to the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries through direct benefit transfer or DBT. Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches of an Air India Boeing 7878 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 7878 aircraft VT-ANX was grounded on 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, Mr. Nadda highlighted that India has operationalized over 1,85,000 Ayushman Arogya Mandirs across the country, delivering comprehensive primary health care services right at the community level. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. The U.S. Department of State announced the visit. State Department spokesman Timmy Pigott said during his travel from the 23rd to 26th of May, Mr. Rubio will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. Mr. Pigott said he will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. The U.S. Embassy in New Delhi has said that Mr. Rubio would attend the Quad meetings on the 26th of May. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
5: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ,

0: के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओ, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी।
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am. How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
5: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Peacock. It dances so well.
6: It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो दीदी
1: दीदी
0: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या?
1: अच्छा अब इधर आओ,
0: ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी वाह ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
0: देखा बेटा ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।
1: लो माली काका ये तो मैंने कर दिया।
0: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
1: मगर ये तो बताओ माली काका ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
1: गेंदे का पौधा?
2: जी
1: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
0: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ
1: देखभाल वो कैसे?
2: देखो बेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
1: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना उसको हटाना होगा।
1: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
0: राजू बेटा
1: जी?
0: अच्छा अब घर चलें?
1: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
0: चलो बेटा।
2: जी
1: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया ना खाने की चिंता ना खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
0: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
4: हाँ दीदी, मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। आज के कलाकार हैं मोहिंदर सिंह।

भजन करनी आ रही इस दुनिया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्यघर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
6: India is accelerating towards universal health coverage.
7: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6: Pandemic preparedness and emergency responses.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
7: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
10: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
11: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
12: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
13: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
14: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है।

0: से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज इटालियन काउंटर पार्ट जॉर्जिया मेलोनी इन रोम टुडे। टू लीडर्स टू डिस्कस वेज टू बूस्ट कोऑपरेशन ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर and review Joint Strategic Action Plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
1: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनना क्यों है? खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनना क्यों है? वो करो जो दिल करता है, हर बात दूसरों की सुनना क्यों है? राहें भी तुम्हारी हैं, सपने भी तुम्हारे हैं, फिर किसी और का रास्ता पकड़ना क्यों है? उनने दो खाबों को खुलकर पिंजरे में खुद को रखना क्यों है? पिंजरे में खुद को रखना क्यों है? श्रोताओं, कितनी खूब हैं ये पंक्तियाँ। उनने दो खाबों को, अपने खाबों को पंख लगाकर उड़ने दो। एक ही तो जिंदगी है, जो चाहता है, जो आपके मन में आता है वो करो। और फिलहाल तो आनंद लो इस गीत का।

हर लोहा। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में तकनीक ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधों के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। आजकल फर्जी कानूनी नोटिस, वीडियो कॉल पर एआई से बनाए गए नकली चेहरे और आवाज़ें, यानी कि डीप फेक टेक्निक का इस्तेमाल कर लोगों को डराकर ठगी करने की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और कई लोग डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे डर के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई तक गंवा बैठते हैं। इन्हीं बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को जागरूक और सुरक्षित रखने के लिए हाल ही में सीबीआई ने एक नया सतर्कता सिस्टम लॉन्च किया है। आज आपको उस सिस्टम का नाम बताना है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में सीबीआई ने नागरिकों को फर्जी कानूनी नोटिस और एआई जनित डीपफेक द्वारा होने वाले डिजिटल अरेस्ट घोटालों से बचाने के लिए किस नए सतर्कता सिस्टम को लॉन्च किया है? इस सवाल का जवाब आप हमें एसएमएस के माध्यम से दीजिएगा हमारे नंबर 9466021336 पर 8:45 तक।

श्रोताओं, अगर धरती पर मधुमक्खियां ना रहें तो क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा? तो मानव जीवन भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का संदेश है। हर साल 20 मई यानी कि आज ही के दिन विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को मधुमक्खियों और परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2017 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। यह दिन स्लोवेनिया के प्रसिद्ध मधुमक्खी पालक एंटोन जांशा की जयंती के अवसर के रूप में चुना गया। श्रोताओं, सोचिए एक ऐसी सुबह की जहां पेड़ों पर फूल तो हो लेकिन उनकी खुशबू में जीवन ना हो, जहां खेत तो हो पर फसलें ना लहलाएं, जहां फलों की मिठास तो हो लेकिन प्रकृति की रंगत धीरे धीरे खत्म होती जाए। तब कितनी डरावनी स्थिति होगी जब हमारी धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाएंगी। छोटी सी दिखने वाले ये जीव केवल शहद नहीं बनाते, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भोजन चक्र को सुरक्षित रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने सुना होगा, मधुमक्खियां जो है ना, ये प्रकृति की सबसे मेहनती और अनुशासित जीवों में गिनी जाती हैं। फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और उसी प्रक्रिया में परागण करती हैं। अब सोचने वाली बात है कि परागण होता क्या है। जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक पराग, जो छोटे छोटे कह लीजिए बिल्कुल ही धूल जैसे कण होते हैं फूलों में, उनको पराग कहा जाता है, एक फूल से दूसरे फूलों तक ले जाती हैं, तो पौधों

में बीज और फल बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप में परागण पर निर्भर है। सेब, आम, बादाम, सूरजमुखी, सरसों, टमाटर और कई सब्जियां जैसे कि आजकल घिया, तोरी, इन सब के उत्पादन में मधुमक्खियों की बड़ी भूमिका होती है। तो मान लीजिए अगर मधुमक्खियां नहीं हैं तो भोजन का संकट भी गहरा हो सकता है। मधुमक्खियां केवल कृषि की साथी नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन की भी रक्षक हैं। वे जैव विविधता को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। अगर मधुमक्खियां स्वस्थ रहती हैं तो वहां पर प्रकृति भी स्वस्थ होती है और उनकी उपस्थिति ये संकेत देती है कि वातावरण अभी जीवित और संतुलित है। आज आधुनिक जीवन शैली और प्रदूषण के कारण मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में है और इसके बहुत से कारण हैं। बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना, पेड़ों और फूलों की कमी, जलवायु परिवर्तन, इतना बढ़ता हुआ प्रदूषण, जंगलों की कटाई, ये बहुत सारे कारण हैं जिनसे दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। यह केवल एक जीव के समाप्त होने का खतरा नहीं है बल्कि पूरी जो हम कहते हैं ना फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और मानव जीवन के लिए भी एक चेतावनी है। अगर हम भारत की, अपने देश की बात करें तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। सरकार भी मीठी क्रांति के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है। यह ना केवल शहद का उत्पादन बढ़ाता है बल्कि फसलों की गुणवत्ता को भी बेहतर करता है। श्रोताओं, प्रकृति केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी तो नहीं, हम सभी का कर्तव्य है कि इन नन्ही जीवनदात्री मधुमक्खियों की रक्षा करें। हम कैसे करें अब ये रक्षा? आजकल आपने देखा होगा जब गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया तो जहाँ भी पानी का स्रोत होता है, नलके हैं या फिर जो पशु पक्षियों के लिए हम कसोरे भर के रखते हैं, उनके आसपास आपको मधुमक्खियाँ दिख जाएंगी। तो ज़रूरी है कि उनके लिए पानी के छोटे बर्तन रख दें, घरों में, बगीचों में फूलदार पौधे लगाएं और सबसे ज़रूरी बात, अनावश्यक कीटनाशकों का उपयोग कम कर दें। एक चीज़ और, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक, खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। श्रोतो, ये जो छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हैं ना, ये बताती हैं कि आकार, छोटा आकार कभी भी छोटे महत्व का प्रतीक नहीं होता। मतलब एक छोटी सी मधुमक्खी अपने अथक परिश्रम से पूरी धरती के जीवन को मधुर बनाती है और यही काम करते हैं भंवरे भी। तो आइए अगला गीत सुनते हैं भंवरों पे आधारित।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के उस महान कवि की जिनके कविताओं में प्रकृति सांस लेती है, जिनके शब्दों में पर्वतों की शीतलता, फूलों की कोमलता और मानवता की गहराई है। हम बात कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की। हर वर्ष 20 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। यह दिन उस महान कवि को सिर्फ याद करने का अवसर नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की उस स्वर्णिम धारा को नमन करने का भी दिन है जिसने भाषा को नई ऊंचाइयां दी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता और शायद यही कारण रहा कि उनकी कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवंत अनुभूति बनकर सामने आती है। उनकी कविताओं में करुणा, सौंदर्य और आत्मिक भावनाओं की विशेष गहराई दिखाई देती है। जब हिंदी कविता एक नए दौर से गुजर रही थी, तब सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी रचनाओं से साहित्य को नई दिशा दी। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। उनके साथ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम लिया जाता है। छायावाद ने हिंदी कविता को भावनात्मक गहराई, कल्पना, प्रकृति प्रेम और आत्मिक चेतना प्रदान की। पंजी की कविताओं में प्रकृति केवल वर्णन नहीं बल्कि एक जीवित साथी बनकर आती है। उनकी रचनाओं में पर्वत, फूल, चांद, बादल और हवाएं मानो बोलने लगती हैं। उनकी भाषा बहुत ही कोमल, संगीतात्मक और सौंदर्यपूर्ण थी। उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कि मधुर संगीत बह रहा हो। समय के साथ उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना और मानव कल्याण के विचार भी प्रमुख हुए। उन्होंने केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि समाज, विज्ञान और आधुनिक जीवन पर भी लिखा। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी पल्लव, ग्राम्या, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन, और विशेष रूप से चिदंबरा के लिए तो उन्हें देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले। उनकी कविताएं आज भी स्कूलों, कॉलेजों और साहित्य प्रेमियों के हृदय में जीवित हैं। श्रोताओं, कुछ कवि केवल शब्द नहीं लिखते, वे समय की आत्मा को आवाज़ देते हैं। आज जब आधुनिक जीवन की भागदौड़ में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, तब पंत जी की कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा है। उनकी रचनाएं हमें संवेदनशील बनने, सौंदर्य को महसूस करने और मानवता को अपनाने की प्रेरणा देती है। हम उस महान साहित्यकार को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिसने हिंदी कविता को नई ऊंचाइयां दी।

0: बाय।
1: दीका
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
8: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
7: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है,
8: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
7: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
8: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
7: आकाशवाणी
8: विश्वास की आवाज।
9: श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरू में हमने आपसे पूछा था, CBI ने नागरिकों को फर्जी कानूनी नोटिस और AI जनित डीप फेक द्वारा होने वाले डिजिटल अरेस्ट घोटालों से बचने के लिए किस नए सतर्कता सिस्टम को लॉन्च किया है, और इसका नाम है अभय। ये AI पावर्ड नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है। ये एक प्रकार का हेल्प बोट है जिसे लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी से बचाने के लिए तैयार किया गया है। आजकल क्या होता है, ठग खुद को CBI, पुलिस या फिर कोई और सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को फर्जी कानूनी नोटिस भेजते हैं, वीडियो कॉल पर डराते हैं और फिर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अभय सिस्टम की मदद से कोई भी नागरिक यह आसानी से जांच कर सकता है कि उसके पास जो नोटिस आया है वो असली है या नकली। CBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लोग संदिग्ध नोटिस को अपलोड कर उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और AI तथा डीप फेक तकनीक के जरिए होने वाले साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। अब आपको बताते हैं उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया। पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आप हैं, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना। अंबागढ़ चौंकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस। मोटाला महाराष्ट्र से आप हैं, विजय सुरलकर और रतन माला। आखिरी दीवान मध्य प्रदेश से सही जवाब दिया है रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी ने। नेहरू चौक पैठन से हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव। कल्याण मुंबई से आप हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। दरियापुर बाबली से सही जवाब दिया है गजनन येले, नवदीप और विश्वदीप येले ने। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा और पारसवनी वर्मा। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना और लव्या। लाडवा से चांद हिंगरा, ईशु और एमी। राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसू। गांव फालसडा जाटान कुरुक्षेत्र से विक्रम योग भारती, संध्या सैनी और हरमन योग भारती। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से है सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया। आदर्श नगर मालोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। बंडीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी और लवली। बिहार स्टेट से हैं W उल्हा बेलदार, वली उल्हा बेलदार और सोनम उल्हा बेलदार। गांव बांडीवाला फजिल का पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश और गरिमा बगड़िया। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। शेरवानी स्कूल गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। बेंगलोर से हैं जयश्री और सुनील। रेलवे रोड गंजुंडवारा से है मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगमनाज और फातिमा गाजी। खमरिया छत्तीसगढ़ से हैं साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति, सोलन हिमाचल प्रदेश से टिया और कृष्णा, हमारे अगले श्रोता हैं रश्मि झरना और भरत कुमार, एटा रोज गंडुनवारा उत्तर प्रदेश से हैं बीपी गौतम और सरिता गौतम, अमीर खुसरो रोज गंजुंडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवर और शेख मोहम्मद कलीम, बालाजी चौक यतमाला से हैं ओटी श्रीवास, मीना श्रीवास और पोपो राणी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से हैं नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद, बोरखेड़ा पित्रमहल उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूणत, नेहा जैन और दीपक, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन और शहनाज सरफराज अब्बासी, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर और प्रियांशी, ग्राम कदुआपड़ा जिला जगत सिंहपुर उड़ीसा से कविता साहू और प्रमोद कुमार साहू, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण भाटे और संदीप भाटे, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे, नेवासा खुपटी से हैं बंडू लोहार पोपलघट और चंद्रकला पोपलघट, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान और सलमान, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि और सानवी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया और योगेश गुजराती, अभिजीत गुहानकर राही मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंदर, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित तिशानी, रायसन करनाल से रजनीश बत्रा, दीपक बत्रा और इनाया बत्रा, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चामोरिया, असलम वली चामोरिया और सरफुद्दीन वली चामोरिया, छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर, कुश गौतम, सरिता मौर्य और गौतम बी प्रकाश साई विहार रामपुर से, तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका भानो, बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा, डोंडी लाहौरा से प्रभा जाटव, राधिका जाटव और अनीता कुमारी, गांव नलोई जिला हिसार से सजन जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा, नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से, हमारे अगले श्रोता हैं गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण और शमशेर भ्याण, गांव खुखनी करनाल से अमन कुमार और संजीव कुमार, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, कुरुक्षेत्र से हमारे श्रोता हैं गौतम, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और हिमाक्ष, मागीराम सैनी, पूनम सैनी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, गांव गाला जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई और हिरेन भाई, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण भाई सोनी, अहमद

नहीं देते, लेकिन वो चाहते हैं उनका नाम कार्यक्रम में शामिल किया जाए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सही जवाब दीजिए और आपका नाम अवश्य ही पढ़ा जाएगा। रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी और राधिका बेलदार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल चींपा और पूजा परिहार। छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े। श्रोताओं, ये थे उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई।

श्रोताओं, एक बार की बात है, दो बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, रामू और श्यामू। एक बार वो इकट्ठे खेल रहे थे, रामू के पास कंचों का संग्रह था और श्यामू के पास कुछ मिठाइयाँ थी। अब वो दोनों ही एक दूसरे की चीज़ हासिल करना चाहते थे, तो उन लोगों ने तय किया कि रामू अपने सारे कंचे श्यामू को दे देगा और इसके बदले में श्यामू अपनी सारी मिठाइयाँ रामू को दे देगा। तो रामू ने चालाकी से क्या किया, एक बहुत ही सुंदर कंचा अलग रख लिया और बाकी के कंचे श्यामू को दे दिए। लेकिन इसके विपरीत श्यामू ने अपनी सारी मिठाइयाँ रामू को दे दी। अब सामान लेकर दोनों अपने अपने घर चले गए। दिन ढला, शाम हुई, रात आई, लेकिन रात को रामू चैन से सो नहीं पाया। बार बार उसके मन में विचार आ रहा था कि कहीं श्यामू ने कोई एक मिठाई छुपा तो नहीं ली। श्रोताओं, ऐसा ही रिश्तों में भी होता है। अगर आप किसी रिश्ते में अपना 100% नहीं देते तो आपको हमेशा इस बात पर संदेह रहेगा, क्या दूसरा व्यक्ति, क्या सामने वाले व्यक्ति ने भी अपना 100% दिया है। अब ये बात प्यार, दोस्ती, मालिक कर्मचारी संबंध आदि जैसे किसी भी रिश्ते पर लागू होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाए, तो इससे पहले ज़रूरी है कि आप उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाएं। यही था हमारा आज का विचार।

श्रोताओं, इसी आखिरी गीत के साथ दीजिए अपनी रेडियो सखी श्वेता जैन को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है,
3: हर पल आपके साथ।
2: समाचार हो या सदाबहार गीत,
3: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
2: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
3: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
2: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इन संदेशों से पहले आपने सुना था कैलाश खेर को। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए अभिजीत की आवाज में।

अभी आपने सुना अभिजीत को, और इसी के साथ कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टुमाले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती, तो जब कभी भी ऐसा हो कि परिस्थिति बदलना मुमकिन ना हो, उस समय अपनी मन की स्थिति बदल लीजिए। यकीन मानिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। इसी विचार के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज। तो जब तक हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं, किस नंबर पे? नंबर वही जाना पहचाना, 0744-221-322। तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

0: Hallo? हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी
1: जी मैम
0: हेलो
1: जी मैम
0: नमस्कार कौन बात कर रहे हैं
1: जी मैम गांव कुतुबपुर सरसाल से निखिल
0: निखिल जी आपका स्वागत है कैसे हैं आप
1: जी ठीक है मैम प्रोग्राम सुनते रहते हैं आपके
0: और कौन से प्रोग्राम ज्यादा पसंद करते हैं
1: मैम सभी पे वो सुनते हैं आपके प्रोग्राम दिन में भी आते हैं रात को भी आते हैं सब सुनते हैं मैम
0: जी तो अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं
1: जी मैम देते हैं
0: पत्र लिखते हैं ईमेल करते हैं
1: जी जी जी जी मैम
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप पसंद करते हैं और साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं आज कौन सा गीत सुनेंगे हेलो निखिल जी आवाज आ रही है आपको
1: जी मैम
0: जी आज कौन सा गीत सुनेंगे
1: कोयला फिल्म का
0: कोयला फिल्म से जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद
1: थैंक यू मैम

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ
0: नमस्कार जी,
1: जी, नमस्कार।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मिलन अग्रवाल बात कर रही हूँ।
0: मिलन, कहाँ से बोल रहे हैं मिलन?
1: कुरुक्षेत्र
0: कुरुक्षेत्र से। क्या करते हैं आप?
1: से। मेरा भी पेपर खत्म
0: कौन से पेपर खत्म हुए? प्लस टू के?
1: हुए थे। हाँ जी, अभी
0: कौन सा?
1: यही एडवांस का
0: जेई
1: दिया था।
0: एडवांस का? मतलब आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं।
1: यस मैम। पेपर
0: अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कैसा रहा पेपर?
1: ठीक
0: हाँ जी,
1: रहा।
0: ठीक रहा। तो कब तक रिजल्ट आ जाएगा?
1: 1 जून
0: 1 जून को आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर रहे हैं?
1: चलेगा।
0: बहुत बड़ी टेंशन उतर गई, पेपर हो गया, अच्छे से हो गया, आप तो बस रिजल्ट की देर है। तो पहली बार आपने कॉल किया है?
1: यस मैम।
0: पहली बार सुन रहे थे तो फ्री

श्रोताओं, आज का दौर डिजिटल युग का दौर है और अब बाजार हमारी जेब में आ चुका है। मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन पर आप चाहे तो कपड़े, दवाइयां, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहां तक कि जो डेली यूज की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो भी कुछ ही मिनटों में मंगवा सकते हैं और साथ ही कुछ ही मिनटों में हमारे घर पहुंच जाती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे जीवन को आसान बना दिया, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जहां पर सुविधा होती है वहां पर सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर ठगी और साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते समय किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। श्रोताओं, आज चाहे बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग, लगभग हर व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ चुका है। कोई थोड़ी ज्यादा करता है, कोई कम। त्योहारों की सेल हो, बहुत भारी डिस्काउंट, घर बैठे डिलीवरी या फिर समय की बचत, कुछ भी कह लीजिए, ये सब मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग को बेहद ही लोकप्रिय बनाते हैं। लेकिन कई बार सस्ता और आकर्षक ऑफर लोगों को ऐसे जाल में फंसा देता है जहां पर नकली सामान मिल जाता है। आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन सामान नहीं पहुंचता, या फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, व्यक्तिगत जानकारी, वो चोरी हो जाती है। इसलिए समझदारी और सावधानी दोनों ही बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो केवल भरोसेमंद और जो फेमस वेबसाइट्स हैं या मोबाइल ऐप्स हैं उनका ही उपयोग करें। किसी भी अनजान लिंक पर या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए जो बीच में विज्ञापन आते हैं उन पर एकदम से भरोसा ना करें। एक बहुत जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई वेबसाइट जरूरत से ज्यादा सस्ता सामान दिखा रही है, मान लीजिए आपने कोई चीज लेनी है और जिसका मूल्य आपको पता है कि 100 रुपए के आसपास है, लेकिन कोई वेबसाइट उसे 10 रुपए में बेच रही है, तो सावधान हो जाइए। कई बार यही लालच ठगी का कारण बन जाता है। खरीदारी से पहले वेबसाइट का जो एड्रेस है, जो पता है, उसे अवश्य जांच लें। ये देख लें कि वो सेफ साइट है। सुरक्षित वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा होता है या फिर एक ताले का चिन्ह बना होता है। अगर आपको वेबसाइट का नाम अजीब लगे, किसी से मिलता जुलता लगे या स्पेलिंग बदली हुई लगे, तो सतर्क हो जाइए। नकली वेबसाइट असली वेबसाइट जैसी दिखती है लेकिन वही फ्रॉड करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी बैंक, कंपनी या डिलीवरी एजेंट अगर आपसे OTP, कार्ड नंबर, CVV, पिन मांगता है, तो समझ जाइए कि ये धोखाधड़ी हो सकती है। किसी से अपना OTP साझा करना, मतलब अपने बैंक खाते की चाबी किसी और को देना, फिर वो OTP यूज करके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर आप किसी नई वेबसाइट से पहली बार खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें, यानी कि जब सामान आपको मिल जाए, डिलीवर हो जाए, उसके बाद आप उसका

भुगतान करें। इससे ठगी का खतरा कुछ कम किया जा सकता है। और खरीदारी करते समय एक चीज और जो ध्यान रखने वाली होती है कि उसके रिव्यूज और रेटिंग जरूर देखें। कई बार दूसरे ग्राहकों के अनुभव आपको सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर किसी उत्पाद पर बहुत ज्यादा शिकायतें हों तो उसे मत खरीदें। कई बार यात्रा करते समय आप खाली बैठे हैं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, या किसी वाईफाई में या किसी कैफे में जहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है, तो मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके कभी भी ऑनलाइन भुगतान ना करें। ऐसे नेटवर्क्स पर आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। हमेशा सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें और ऑर्डर करने के बाद अपनी बैंक डिटेल्स या ईमेल आईडी जरूर जांचें। अगर आपको कोई भी लेन देन संदिग्ध लगता है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें और भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन संख्या 1930 ऐसी स्थितियों में मदद करती है। श्रोताओं, तकनीक तभी वरदान बनती है जब उसके साथ समझदारी जुड़ी हो। ऑनलाइन खरीदारी हमें सुविधा तो देती है, समय भी बचाती है, लेकिन कई बार एक छोटी सी असावधानी हमारी मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए, जिस पैसे को कमाने में महीनों की मेहनत लगी हो और वो कुछ सेकंड्स की लापरवाही के कारण ठगी का शिकार हो जाए तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसलिए डिजिटल दुनिया में जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऑनलाइन खरीदारी करते समय हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है।

0: Hallo? हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह कंवर बोल रहा हूँ।
0: जी हरबिलास जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से हैं।
0: जी, मौसम कैसा है?
1: मौसम बिल्कुल सुहाना, धूप अधिक पड़ रही है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं।
0: जी, तो सुहाना तो नहीं है फिर, तो सतर्क होने वाला मौसम है।
1: जी, सतर्कता तो बरतनी चाहिए, ऐसे तौलिया लपेट के निकलना चाहिए। अगर जरूरत तो नहीं तो निकले ही नहीं
0: बिल्कुल
1: 12 से 5 के बीच में, और
0: जी
1: पानी अधिक पीते रहें,
0: जी
1: आम के पने का सेवन करें, नींबू से पानी है तो बचाव करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बहुत जरूरी हो तभी निकले, खान पान का
1: जी
0: विशेष ध्यान रखें, और जब बाहर धूप में निकले तो अपने सिर को ढक कर निकले।
1: जी जी
0: तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे श्रोता ये सुन रहे होंगे और इसका पालन भी अवश्य ही करेंगे। आज कौन सा गीत
1: जी
0: सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: जी
1: खुदा भी आसमान से जब जमी पर देखता हुआ।
0: जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार मैडम,
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, ग्राम आवास बिहार से।
1: अनवर बिहारी जी, कैसे हैं आप अनवर जी?
2: सब मजे हैं मैडम, और आपसे बात करके हमारे भी अच्छे हो गए। गालिब तो एक बड़ा मशहूर शेर है
1: जी,
2: उनके देखे से जो आ जाती है मुखरे पे चमक, वो समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: बस यही हाल हमारा, हम आपसे बात करते हैं और खुश हो जाते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। कि और कार्यक्रम कौन से पसंद करते हैं हमारे केंद्र के?
2: बहुत अच्छा कार्यक्रम साफ सुनाई देता है
1: जी।
2: और आप लोग जो प्रसारित करती है, आपसे बात करने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से हमारी आवाज दूर दूर तक पहुँचती
1: जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज कौन सा गीत सुनेंगे?
2: फिल्म मेला का एक नगमा है मोहम्मद रफी की आवाज में,
1: यहाँ
2: मिल गया भगवान। ये मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेला का एक गीत है, ये जिंदगी के मेरे दुनिया में कम ना होंगे अब तो कम ना हो। और इस गीत को हम सुनना चाहेंगे हसीना मंसूर बेगम, नजमा नौशाही, पूनम रजी और बसंती के साथ।
1: माफ कीजिएगा, ये वाला गीत तो नहीं।

0: है हमारे पास फिलहाल, हम आपको कोई और फिल्म से सुनवाएं, निकाह फिल्म का गीत सुनवाएं क्या आपको?
1: हाँ, फिल्म निकाह का अपना जी।
0: चलिए आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार मैम जी।
3: कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं सुभाष बोर्ड बात कर रहा हूँ मैम।
3: सुभाष जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
4: बस ठीक है मैम, आप सुनाओ।
3: बहुत बढ़िया। और जब पुराने श्रोता कॉल करते हैं तब तो भी और भी अच्छा लगता है।
4: बिल्कुल, बहुत हम लोग काफी दिनों से जुड़े हैं आप आकाशवाणी पर से मैम।
3: जी जी जी। तो समय समय
4: पर परिवार कैसा है?
3: सब बहुत बढ़िया। जो यहाँ से कार्यक्रमों के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है तो कितना मानते हैं और कितना और लोगों को जागरूक करते हैं।
4: हेलो।
3: हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ।
4: आवाज थोड़ी कम आ रही
3: है? कम आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, जितना हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो आप कितनी मानते हैं और लोगों को कितना जागरूक करते हैं?
4: देखो ऐसा है मैम, ये रेडियो का और आकाशवाणी का तो देखो हमारा जो बहुत ही पुराना रिश्ता है
3: जी।
4: अब तो देखो नेट का जमाना आएगा, सभी फोन से जुड़े रहते हैं और ये जो रेडियो से तो थोड़ा लोग जो है दूर होते जा रहे हैं। पर ऐसा है हमारा तो जो मजा हमें रेडियो सुनने में आता है बाकी और किसी चीज में नहीं आता जी।
3: जी जी जी, ये अपना अपना लगाव, अपनी अपनी पसंद है, आपका प्यार है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें जानकारी रेडियो से पहले से आज भी ले लेते हैं
3: जी,
4: ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो सुन ही लेते हैं रेडियो जी।
3: जी
4: जी,
3: बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनेंगे?
4: आज खतरों के खिलाड़ी मूवी का सुना दीजिएगा, तुमसे बना मेरा जीवन।
3: जी, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
4: शुक्रिया मैम।

0: श्रोताओं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता केवल वोट नहीं देती बल्कि अपने भविष्य की दिशा भी तय करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो काम कहां पर करते हैं? लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्यों बनाई गई है और विधानसभा का क्या महत्व है? भारत के लोकतंत्र की ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये आखिर क्या है और देश चलाने में इनकी क्या भूमिका है, आज थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि संसद तथा विधानसभाओं में जाकर जनता की आवाज उठाते हैं और यही व्यवस्था देश को मजबूत और जिम्मेदार बनाती है। अब सबसे जरूरी बात समझने की है कि संसद क्या है। भारत की राष्ट्रीय स्तर की कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं और भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि ये सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है और जब हम चुनाव में वोट डालते हैं तो हम लोकसभा के सांसद चुनते हैं और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 साल का होता है। देश का प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा से ही चुना जाता है। लोकसभा जनता की समस्याओं और जरूरतों को सीधे सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। यहीं पर देश के महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा होती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है और जनता के हितों पर बहस होती है। इसलिए इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। अब जो राज्यसभा है वो है राज्यों की परिषद, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उन्हें चुनते हैं। ये एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जाता। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा ये सुनिश्चित करती है कि देश के हर राज्य की आवाज संसद तक पहुंचे। यह जल्दबाजी में बनाए जा रहे कानूनों पर गंभीर चर्चा और समीक्षा का अवसर देती है। इसे अनुभव और संतुलन का सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं विधानसभा की। जैसे देश चलाने के लिए संसद होती है, वैसे ही हर राज्य को चलाने के लिए विधानसभा होती है। विधानसभा राज्य के कानून बनाती है, राज्य की समस्याओं पर चर्चा करती है, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाती है और जब हम राज्य स्तर के चुनावों में वोट डालते हैं तब हम विधायक चुनते हैं जिन्हें की MLA कहा जाता है। सड़क हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर स्थानीय विकास जैसे कई मुद्दे राज्य सरकार और विधानसभा से जुड़े होते हैं, यानी कि जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान काफी हद तक विधानसभा से जुड़ा होता है। श्रोता, ये संस्था हमें भरोसा देती है कि इस देश में हर नागरिक की आवाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि करोड़ों सपनों, भावनाओं और उम्मीदों का जीवंत लोकतंत्र है। अब देखते हैं कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: सोहन लाल बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं सोहन लाल जी?
1: नीलोखेड़ी से।
0: नीलोखेड़ी से। चलिए, समय बहुत कम रह गया, जल्दी से गीत बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: दिल में लावा का
0: जी। आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नायाब रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का।

Gamaga. Sagama Pagama, Nidiza, Tani, Sagama Pagama, Panida.

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर, जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी है गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरपती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल।

विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

0: मैं बंगाली ठोकरा करूं प्यार को नमस्कारम
1: मैं मदरा

ओ बंगाली गाना मुनवा जाए धूम सखी गो तुम्हारे कैमन करे पाबो।

0: ओ मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले
1: ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मिठिल्ले सबकी चिठकार की गंगोली यारो
2: की बोले रे
1: मेरा हो जा साजना फिर बेड़ा पारो
0: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नुमुटारो
1: मदरासी छोकरी मुझे

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार और संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मदर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूं ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ।

0: डोले
1: मैं दिल का कौन है खर...

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। ये है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम 2 गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अब यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एक राष्ट्र के एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
1: जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो, और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भी इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करे और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 30 मई को सुबह 6 से 8 बजे तक प्रदेश के 6 प्रमुख स्थलों पर दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक आयोजित की जाएगी। हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान हेरिटेज एंड सिटी वॉक के लिए विशेष विवरणिका का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि आओ चलें अपनी विरासत के साथ मुहिम के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को हरियाणा के समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके तथा उनसे प्रेरणा ले सके। पहली बार 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के विरासत और पर्यटन स्थलों के विकास, संरक्षण और सौंदर्यकरण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। हेरिटेज एंड सिटी वॉक में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को क्यूर कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसकी पूरी जानकारी और पंजीकरण संबंधी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक लोग मौके पर पहुंचकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जींद नागरिक अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश पांचाल ने कल इन वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुरुष वार्ड के अंदर और बेड पर बैठे मिले, जिससे महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया से बातचीत में डॉ. रमेश पांचाल ने बताया,
2: महिला वार्ड है एसएमसी के सामने, जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनाया अलग से माँ के लिए, बच्चे की रेस्ट करने के लिए, उसमें आदमी अंदर घुसे रहते हैं। तो मैंने यही कहा है कि सबकी बहू बेटियां बराबर है, कोई माता है, बहन है, कोई दूध पिला रही होती है बच्चे को, तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए उनसे पहले भी कई बार अनुरोध किया, अब भी अनुरोध किया, आपकी जहाँ गायनी डिपार्टमेंट है, गायनी वार्ड है, तो वहाँ आदमियों को अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी औरत के साथ कई बार कोई घरवाला ना हो आदमी, वो मजबूरी है।
0: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और मिशन चेतना फाउंडेशन प्रमुख सुश्री मनीषा चौधरी ने कल पंचकुला में स्वास्थ्य भवन परिसर से बाल टीबी मरीजों के लिए विशेष फोर्टिफाइड पोषण आहार पैकेट ले जा रहे वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण वितरण का ये महत्वपूर्ण अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस सामूहिक प्रयास में मिशन चेतना फाउंडेशन और राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने निक्षय मित्र के रूप में आगे आते हुए हरियाणा राज्य के 3 जिलों में 0 से 18 वर्ष तक के 70 बाल टीबी मरीजों को 6 महीने की अवधि के लिए गोद लिया है, जिसमें पंचकुला के 20, अंबाला के 20 और यमुनानगर के 30 मरीज शामिल हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में फरीदाबाद स्थित मांगरबानी अरावली क्षेत्र में कल नेचर वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का थीम एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहाँ थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है। इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप ज़मीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत, सागर, किनारा, गुलमोहर, नदी, पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज

फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, अपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है बड़ा ही।

0: ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलता, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे?
1: दूरस से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, लुधियाना से पप्पू चोपड़ा, कविता सोमदत्त चोपड़ा, सुजानगढ़ टाड़ा से पिंकी साक्षी गुनीता, हिसार से राजेंद्र सैनी, राजेश सैनी, बड़वास से प्रवीण श्रीमाली, कुरुक्षेत्र से वीना ढींगरा, राजश्री अनुश्री ढींगरा, फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र ज्योति, जाह्नवी पीहू, वाकोडी से उत्तम जमथाड़े, स्वराज स्वरित पोपलवार, संघर्षा संविधान, हिंगोली से शाहजी बोरखी, हदगांव आष्टी से सुधाकर कामले, संदीप कामले, पुरशा देगांव से सदाशिव थोरात, मलोट से रमेश जाजोरिया, गीता गगनदीप अर्जू जाजोरिया, तिवाल ग्राम से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता छोटू, रोशनी अजय, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, चौथरीवास से राज

0: ये था सपनावस्थी का गाया अंश फिल्म का गीत। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आप सभी की पसंद का है। आप हैं अकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, प्रमोद धनभर, किशोर नारे, रघुनाथ नारे, शिंगेकर, करनाल से गुरिंदर सिंह पाधा, इंद्रजीत, मनमीत, मनमिंदर, निम्नाबाद जींद से जसबीर, इल्मावादी गुरप्रीत, लवप्रीत, कर्मजीत, जितेंद्र, आनंद सिटी गुजरात से आशाबेन पटेल, विशाखा पटेल, राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी, जुबेदा, जीशान लखानी, कुदुपल्ली उड़ीसा से गिद्धारी लाल विश्वकर्मा, सरस्वती विश्वकर्मा, विहंगम, चौधरीवा से मांगेराम, सुनील, शुभम, यश और विनोद।
1: और चाहे कितनी भी धूप हो, इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाए तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए, निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

0: नदिया से दरिया।
1: लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है।
2: जाओ शाम पैया करी नदी नांगे न जाओ शाम पैया करी।
1: और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है। लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: ये हवा ये नदी का किनारा,
1: चांद तारों तरंगी इशारा,
0: कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी

0: रहा है बेखबर, उसके फिर तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये नदी का किनारा।
1: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सूख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़े और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पेंच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही है कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता है जो कहती है कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है, जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता है जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और रक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था तो अब ये गाना, इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीक की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी है जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिरी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो

नदियों के बीच बसा है। महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

0: साथ सुनो।
1: कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती है कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।

0: दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे

0: 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह,
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है, जबी चेहरे की चमक बता रही है।
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
2: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
2: वहाँ जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहाँ का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहाँ पे।
1: अच्छा,
2: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह,
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपकी कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
1: वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद। इतनी जगह घूम के आई हो,
2: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखी, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
2: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं, मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
1: लेकिन फर्क होता है,
2: स्वाद बिल्कुल फर्क होता है,
1: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
2: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
2: जी।
1: तो अब एक गीत सुन ले।
2: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियाँ।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है,
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता है वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजें, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गई है, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया। ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पे ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें, हाँ, शुद्ध जो शहद है वो मिलता है,
1: एक
0: है ना?
1: बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता
1: ने,
0: पर्यावरण को लाभ भी पहुँचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती है।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने ही कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे

0: अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो
1: आरती
2: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का
1: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
2: बिल्कुल
1: तो हम बात कर रहे थे आज की भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं, और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
2: अरे बहुत
1: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियाँ, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
2: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा।

0: जी,
1: तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
0: तीन
1: भाई थे। और बंबई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा, और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया, और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में दो से पांच रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है, और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
1: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत मुश्किल है।
1: तो इसमें एक या दो ताने और दो से पांच बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है
1: जी। और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है, और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ, बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं। और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामिति और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है, या विवाह समारोह के अवसर है, या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है, और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है जो सबसे खूबसूरत है तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं हजारों भाषाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ शोध हुआ उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने

0: का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, ये अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ में आता है ना, चित्र की जिस भाषा को जानते हैं,
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने तो देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर
1: आइए। जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
1: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं,
0: सबका नजरिया अलग
1: मायना रखता है, है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से। जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में,
1: कितना अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
1: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
0: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना, लेकिन शौक रखना चाहिए,
0: अपने मन से सीखिए। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
0: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषा
1: बोल लेते हैं, चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: तो ये गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन तारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पर एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल
1: कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना

0: जितने जा रहे हैं हाँ। अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल मत छेड़िए।
0: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, हाँ हाँ। वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा है,
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। यह हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी हाँ। कहना श्रोताओं हाँ। की विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी, तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए, जरूरी है, भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण

0: कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
0: जी बिल्कुल। और आप हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
0: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाए, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंथ लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा

0: थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं। और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेको और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिल जाएगी।
1: तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्ख था कि तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी, जी।
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
3: हाँ।
2: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
3: हाँ।
2: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो घूमने जाओ तो अलग बात है
3: जी।
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो
3: हाँ।
2: कभी रहा ना हो
3: हाँ। हाँ।
2: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था लेकिन गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहाँ से और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा
2: 86 में।
3: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था,
2: हाँ,
3: पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो भी सब भी देखा मैंने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहाँ पे और रविशंकर जी का वहाँ पे वो था,
3: बिल्कुल
2: यस। तो ये सब भी
3: उदय शंकर जी का।
2: तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
3: जी।
2: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे।
2: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
3: पहाड़ों में
2: पहाड़ों में कैसे।
3: बिल्कुल,
2: तो ये था
3: मुंबई। 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
2: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
3: जी,
2: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पर वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
3: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी,
2: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटोपिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल
3: जी,
2: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
3: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
2: तो
3: है,
2: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
3: जी, जी।
2: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
3: जी,
2: उतार देंगे लोग,
3: लोग उतार देंगे,
2: ये उतार
3: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
2: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
3: चरम पर थी,
2: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
3: जी,
2: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त बजाया करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
3: बिल्कुल,
2: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
3: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
2: बहुत प्यार,
3: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
2: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कुछ चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
3: जी,
2: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
3: जी
2: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
3: क्या बात है,
2: तो
3: क्या
2: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
3: पेडर रोड,
2: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
3: जी।
2: तो मैं गया और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
3: जी।
2: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
3: जी।
2: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे
3: जी,
2: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
3: वाह वाह,
2: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
3: जी।
2: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
3: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
2: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
3: ये जो जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह,
2: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
3: और भूपी जी ने क्या गाया था?
2: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गज़लों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गज़लें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गज़ल चाहिए।
3: अच्छा।
2: हाँ तो मैंने पहली गज़ल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
3: हाँ
2: वो ये गज़ल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गज़ल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
3: अच्छा।
2: वो गजल शराब पड़ती।
3: ओह
2: तो वो गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
3: जी जी जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
2: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
3: जी,
2: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
3: वो
2: उसको, हाँ वो पढ़ देता हूँ।
3: जरूर जरूर।
2: ये जो जिंदगी की किताब है

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया
0: जी,

0: और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गज़ल पे। तो ये गज़ल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूँ कह लीजिए मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
0: पंकज जी उसके बाद
1: जी
0: ये गज़ल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गज़ल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो डरने को खुश हुए। और ये गज़ल पहली नज़र में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गज़ल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गज़ल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
1: नबील था, नबील
0: नबील नबील
1: जी जी,
0: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं
1: जी।
0: तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही।
1: हाँ,
0: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में
1: जी।
0: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
1: अरे बाप रे,
0: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
1: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
0: नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
1: अच्छा ओके,
0: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
1: आरोही में गाया।
0: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गज़ल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनते थे, तो ये जब गज़ल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने ये बात
0: ये कही मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे
1: जी जी।
0: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं,
1: ओहो,
0: है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है
1: जी।
0: और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहाँ गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गज़ल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ, मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया, हाँ या सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी है? तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मजरू सुल्तान पर आशीर्वाद
1: शायर की बात है ना।
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफ़र तो मेरा ज़्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरूर सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी,
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी,
1: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब जी,
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन रहा हूँ जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका हाँ, आखिरी एल्बम था ये,
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में
0: जी, जी,
1: वो चले गए
0: जी,
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका कव करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
0: जी जी जी।
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया, तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे, उससे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने यह गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आएँ और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन खोला,
1: ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियाँ वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा
0: जी।
1: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज हाँ, है पूरा,
0: और पूरा हॉल
1: हाँ, हॉल है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, सेटिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे,
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
0: उनको
1: पसंद थी गजल, तो सारा, तो वो गजल पढ़ी जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वहीं खत्म हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी
0: जी,
1: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
0: अरे गजब,
1: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: जी जी
1: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: गजब गजब,
1: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं,
0: अद्भुत अद्भुत,
1: ये अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप,
0: अरे
1: क्यों
0: नहीं लगे,
1: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
0: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
1: हाँ जान।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे, उजाले उनकी यादों के, मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूँगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह
0: सब
1: से
0: सब चीज़ों को संभालते
1: थे, सब संभालते थे, तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
1: हैं, ऐसा कम होता है
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
0: खयाम
1: साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए
0: जी,
1: आनंद जी आए
0: बिल्कुल,
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए, हाँ? और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं,
1: हाँ?
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
1: हाँ?
0: और वहीं एक घंटे बात हो रही है, हाँ?
1: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको ज़ाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके
0: ले सकते
1: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
0: किसी के पास नहीं है,
1: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, जब गानों पे बातें हो रही हैं या गाने कैसे बने उस पे बातें हो रही हैं
0: जी,
1: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
0: एक से बढ़कर एक,
1: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
0: और
1: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: ये क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी,
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
0: जी जी,
1: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
0: जी,
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया
0: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी,
1: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहाँ तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
0: जी,
1: तो वो सब आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
0: अरे
1: मैं अपने घर चला आया।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ।
1: कि हम मैंने शादी कर ली है
0: हाँ।
1: और

0: तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगे नहीं सबकी। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके।
1: गजब।
0: और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, करेंगे उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा,
0: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूंगी।
1: गजब।
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया,
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है, सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में।
1: जी शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा।
1: वाह।
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर गिरा
0: और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूँ अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी।
0: मतलब किसी
1: लाइन होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है।
0: इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं

0: खुद को समेटते हैं यहां से वहां
1: क्या बात है?
0: से हम
1: क्या बात है? क्या बात है?

0: कहाँ से हम।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने युवाणी। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर।

6:20 पर आप सुनेंगे गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 3 से श्लोक 28 से 30 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर विशंभर दास। और शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा अन्नदाता। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 7:00।

जय जवान, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर, और कार्यक्रम गुलदस्ता का समय रहेगा 7:45। रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा आपके लिए और छाया गीत आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किए जाएंगे।

हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे, रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा 6:05, रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। और प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर।

ये थी हमारे केंद्र से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब से कुछ ही देर में आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी की रेडियो दोस्त योग माया। सभी श्रोता साथियों को तहे दिल से प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म खेल ही खेल में के इस गीत के साथ। इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा और जहर खान ने।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। इस गीत का संगीत दिया है मदन मोहन ने, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

हम हैं राही प्यार के। साथियों आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया है साधना सरगम ने। संगीत है नदीम श्रवण का, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म एयरलिफ्ट से। इस गीत का संगीत दिया है कुमार ने और गीत के बोल संगीत दिया है अमाल मलिक ने और गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म कॉलेज गर्ल से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत है बपी लहरी का, गीत के बोल हैं शिव कुमार सरोज के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। श्रोता साथियों, कार्यक्रम युवाणी में आज हम लेकर आए हैं युवा फरमाइश। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोता साथियों, जो गीत अभी आपने सुना इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई थी, रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल और छोटा बाजार थाने सर कुरुक्षेत्र से हैं श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग, राघव शर्मा, तनुज, पलक, मास्टर उद्देश्य, और इसी गीत को सुनना चाहा है। पटेल नगर मालौट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जजोरिया और आरसू जजोरिया तथा गुड्डू। और आइए अब सुनते हैं फिल्म मर्डर से ये गीत। इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई है जमशेदपुर झारखंड से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन, और जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म मर्डर गाएगी, जिसे गाया है के ने। गीत के बोल हैं सैयद कादरी के, संगीत है सोनी म्यूजिक।

युवा साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म ठोकर से ये गीत जिसे गाया है मुकेश ने। इस गीत को सुनना चाहा है भोला कॉलोनी घरोंडा जिला हरियाणा करनाल से हैं विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। इसी गीत को सुनना चाहा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि और दीक्षा और शशांक ने।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
3: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
3: विश्वास की आवाज।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू ने। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह और गांव शकरपुर तहसील बराड़ा जिला अम्बाला से है राजीव कुमार निरंकारी, गोल्डी और विनोद निरंकारी। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोता साथियों, आपकी अगली फरमाइश हमारे पास आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करता है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, और इसी गीत को सुनना चाहा है। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म एक विलन का ये गीत, जिसे गाया है अंकित तिवारी ने।

इस अंतिम पेशकश के साथ ही कार्यक्रम युवाणी अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talk with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
2: Mr. Modi also said both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and the UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. The Defence Research and Development Organisation DRDO has successfully completed the final developmental trials of the unmanned aerial vehicle launched precision guided missile V3, marking a significant achievement for the country's defence sector. On the occasion, Defence Minister Rajnath Singh termed it as a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defence sector. The Gujarat government has extended its support to One Nation, One Election Bill. State's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi stated this after Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election held discussions with a delegation of various political parties in Gandhinagar on the second day of its visit today. Defence Minister Rajnath Singh today met South Korean Minister for Defence Acquisition Programme Administration Lee Yong-chul in Seoul. In a social media post, Mr. Singh said during the meeting, both sides agreed to harness the symbiotic efforts to create avenues for joint development, joint production and joint exports. Severe heat wave gripped northern and central India with temperatures breaching the 44 degree mark at several places today. The India Met Department has forecast severe heat wave conditions will continue over northwest and central India during the week. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur, keeping their playoff hopes alive. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रूपये की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण लू की स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्रित करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि जारी की। उन्होंने 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और बागवानी विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रूपये किलो तय किया गया है। इससे अब किसान को एक निश्चित आय की गारंटी मिली है। वे विश्व मधुमक्खी दिवस पर हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालकों को अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव से राहत दिलाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है।
1: हरियाणा सरकार लगातार किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत कर रही है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी भी ई क्षतिपूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में दाम कम मिलते हैं तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम सरकार करती है। हमने 16 अगस्त 2025 को पंचकुला की भूमि पर यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ आप तक पहुंचेगा।
0: उन्होंने कहा कि इसके अलावा मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मधुमक्खी पालन नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ाकर 7,750 करने और शहद उत्पादन 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बॉक्स, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक ढंग से चलाने में सहयोग करने के लिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में इसराइल की तकनीक पर आधारित देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र पर लगभग 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मधुक्रांति पोर्टल पर हरियाणा के 3,000 से अधिक मधुमक्खी पालक रजिस्टर्ड हैं। मधुमक्खी पालकों के रजिस्ट्रेशन करवाने में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश

0: के विभिन्न हिस्सों से आए मधुमक्खी पालकों द्वारा शहद और शहद से बने उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। इससे पूर्व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने शहद उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने को लेकर कहा,
1: कुछ महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये साथी आए थे और उनकी एक दिक्कत थी, वो भी दूर कर दी। तो क्योंकि MSP तय कर दिया और उससे कम बिकेगा तो भावांतर मिलेगा। वैसे ये योजना हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें सबसे ज्यादा किसानों की मदद करता है।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने आज राज्य के श्रमिकों एवं श्रम नियुक्तियों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। श्री विज ने बताया कि ये ऐप डिजिटल क्रांति के तहत विकसित किया गया एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जो श्रमिकों और नियुक्ताओं के बीच सीधा, पारदर्शी और त्वरित संपर्क स्थापित करेगा। ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीन भाषाओं में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रमिक एवं नियोक्ता सरलता से इसका लाभ उठा सके। श्री विज ने कहा कि श्रम मित्र ऐप दैनिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा और आने वाले समय में पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्रमिकों को काम की तलाश में घंटों लेबर चौक पर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। श्री अनिल विज उनके पास खुद ज्ञापन लेने पहुंचे और कर्मचारियों ने मंच से ऊर्जा मंत्री के हक में नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में श्री अनिल विज ने कहा,
2: जो मुख्य बातें रखी एक एक्सग्रेशिया की रखी, उसमें कहा कि पांच साथी काम करते हुए अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन उनको एक्सग्रेशिया इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सग्रेशिया की कंडीशन है पांच साल। तो मैं कोशिश करूंगा कि पांच को घटाकर दो साल करूँ।
0: श्री विज ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ को पूरा करने के लिए वे काम शुरू कर चुके हैं और कुछ को पूरा करने के लिए वे और जोर लगाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। कांग्रेस ने जींद में भी आज इन्हीं मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन अभी लू का चलना जारी रहेगा।
3: जो लू की स्थिति बनी हुई है ये कंटिन्यू करेगी, खासकर जो है वेस्टर्न पार्ट पंजाब, हरियाणा और पंजाब के बाकी क्षेत्रों में कंटिन्यू करेगी। और टेम्परेचर जो है वो 46.9 रोहतक में, हरियाणा में हाईएस्ट है, वो फ्रीकोट में 47 डिग्री सेल्सियस। ये जो है साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पंजाब के, यहाँ पे लू की स्थिति है और ऑरेंज अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए। इसके बाद कुछ इसमें कमी आ सकती है कुछ, क्योंकि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का, कुछ विंडी वेदर का चांसेस लग रहा है कल के बाद, उससे स्थिति में सुधार आएगा। हो सकता है कि बीच बीच में आज और कल भी कुछ जो है हल्का सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक दो जगह पे पंजाब में हो।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रूपये की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर

3 के श्लोक संख्या 28 से आगे की व्याख्या सुनेंगे। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रबुद्ध व्यक्ति आत्मा को गुण और कर्म से अलग पहचानता है। वह समझता है कि गुण अर्थात इंद्रियां और मन गुणों अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार जानने वाला योगी व्यक्ति इंद्रियों के विषय में कभी भी आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि इंद्रियों के कार्य परिस्थिति जन्य और अस्थायी हैं। वह सांसारिक बंधनों से विचलित नहीं होता और उन्हें अपना कर्तव्य मानकर उनका निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक चिंतन में ही लीन रहता है। वस्तुतः गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन्हीं त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेन्द्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है। इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। जो इनको अच्छी तरह से जान लेता है वह फिर आसक्ति में नहीं पड़ता। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों में ये तीनों गुण देखे जा सकते हैं। सत्वगुण सुख तथा ज्ञान के संग से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से बांधता है। सत्वगुण सुख में लगाकर, रजोगुण कर्मों में लगाकर और तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। इन तीनों गुणों की एक विशेषता है, इनमें से जब एक ही की वृद्धि होती है तो बाकी दो दब जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण तथा तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। संपूर्ण इंद्रियों में प्रकाश और बुद्धि में विवेक की जागृति हो जाए तो ये बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षण हैं। अंतःकरण में लोभ कर्म करने की प्रवृत्ति, नए नए कर्म करना, अशांति और स्पृहा उत्पन्न हो जाए तो ये बढ़े हुए रजोगुण के लक्षण हैं। अंतःकरण में अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह आ जाए तो ये बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं। श्रेष्ठ कर्मों का फल सात्विक तथा निर्मल होता है, राजस कर्मों का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह तथा मूर्ता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं गुणों से भावित होने के कारण मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। वह है सात्विकी, राजसी और तामसी। जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही निष्ठा बन जाती है। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी मनुष्य यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और तामस प्रवृत्ति के लोग भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। भोजन में रुचि को देखकर भी व्यक्ति के स्वभाव की पहचान का साधन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। सात्विक मनुष्य को रसयुक्त, स्निग्ध आदि भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं। राजस मनुष्य को अधिक खट्टे, तीखे आदि भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं और तामस प्रवृत्ति के मनुष्य को अधपके, रसरहित, अपवित्र आदि भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं। इस तरह संपूर्ण जगत तीनों गुणों में बढ़त रहा है ऐसा दृढ़ बोध हो जाने पर मनुष्य निरासक्त भाव में जीने लगता है और अंत में उस शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सविन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अर्थात बुद्धिमान लोग उन अज्ञानी लोगों को परेशान न करे जो बहुत कम जानते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आत्मा गुणों और उसकी गतिविधियों से सर्वथा भिन्न है तो अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से क्यों जुड़े हुए हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया है कि अज्ञानी जन भौतिक प्रकृति के गुणों से भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। वे 3 गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होकर मानसिक या भौतिक आनंद को ही वास्तविक आनंद मानने लगते हैं। यदि विचार किया जाए तो इंद्रिय जन्य सुख क्षणिक होता है और अंत में बड़े दुख का कारण बनता है। इसलिए वे केवल फल की इच्छा के बिना किसी भी कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करने में असमर्थ होते हैं। वे अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक अर्थात सांसारिक संबंध को ही सत्य मानकर मोह में पड़ जाते हैं। तत्पश्चात वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं लेते। वस्तुतः ऐसे व्यक्तियों के विषय में बुद्धिमान व्यक्तियों को यह कहकर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए कि तुम केवल आत्मा हो, शरीर नहीं। कर्म करना निरर्थक है। आध्यात्मिक रूप से

0: ईमान व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म का निर्देश देकर उन्हें धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों को सीधे तौर पर उनकी कमियां दिखाई जाएगी तो वे अकर्मण्यता का शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर ज्ञानी जन को समाधान की दृष्टि से धीरे धीरे प्रयास करना होगा। हम लोक में भी देखते हैं जो मंद बुद्धि या अल्प ज्ञानी होते हैं उनके लिए विद्वत जन उनकी कमियां न बताकर सुधार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसक्ति की भावना ऐसी नहीं है कि आज समझाया जाए और कल वह छूट जाए। इसके लिए अथक प्रयास या अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि कैसे तीनों गुणों में प्रकृति बरतती है, कैसे गुणों के कारण कर्मों में अंतर आ जाता है और कैसे निरासक्त होने से जीवन सार्थक होता है। जब उन्हें यह एहसास या अनुभव होगा कि प्रकृति के तीनों गुणों से ही मोहित होने के कारण सभी गुणों और कर्मों में आसक्त हैं, तब वे अज्ञानी जन भी सतत अभ्यास से सभी कार्यों के फल को उस परमात्मा में अर्पण करके निरासक्त भाव में जीवन जीने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म बंधन से बचने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर सर्वसाधारण के लिए यह उपदेश दे रहे हैं कि कर्तापन का अहंकार और फल की कामना से रहित होकर विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को सभी विषयों में अर्थात देह, गेह, पुत्र, भार्या, भ्राता आदि के विषय में ममता शून्य होकर कर्मों का आचरण उसे बंधन में नहीं बांधता। इस विषय में प्राय लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो घर परिवार, स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि को छोड़कर साधु संन्यासी हो जाते हैं वो त्याग के कारण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु वास्तव में यह त्याग नहीं है, क्योंकि जब तक अंतःकरण में सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग प्रियता है, उनका महत्व है, तब तक बाहर से घर परिवार, गृहस्थ को छोड़ने पर त्याग नहीं होता। जीवन में हरेक व्यक्ति को सांसारिक राग, आसक्ति, ममता आदि से रहित होकर समर्पण भाव से जीवन यापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म फल की आसक्ति की कामना रखकर कर्म फल के साथ अपना संबंध न जोड़कर सभी कर्मों को भगवत अर्पण करके कर्तव्य कर्म को करता है, वास्तव में वही योगी है और वही कर्म बंधन से मुक्त है। वस्तुतः संसार में भी वही व्यक्ति अत्यधिक दुखी रहता है जो दूसरों पर आशा रखता है, जिसे उम्मीद रहती है कि मुझे ये मिले तो खुश हो जाऊं, ऐसा होगा तब ठीक होगा। यही आशा ही अंत में उसकी निराशा का कारण बन जाती है। ममत्व भाव या मोह का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दृष्टिगोचर होता है, जहां धृतराष्ट्र द्वारा पुत्र मोह के कारण अपना सर्वस्व गंवाना पड़ा, अर्थात 100 के 100 पुत्र नष्ट हो गए। यदि सभी बंधनों से मुक्त होना है तो समर्पण भाव अति आवश्यक है। इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि यत करोषि यदस्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्तसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात तू जो कुछ करता है, तू जो कुछ खाता पीता है, तू जो कुछ यज्ञ आदि करता है, तू जो कुछ दान देता है और तू जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार से आचरण करने वाला अर्थात सब कुछ परमात्मा को अर्पण करने वाला व्यक्ति शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रोताओं, आज आपने गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत गीता अध्याय 3 के श्लोक संख्या 28 से 30 तक की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। इसमें आज आपने सुना अध्याय 3 से श्लोक 28 से 30 की व्याख्या। व्याख्याकार थे डॉक्टर विशंभर दास। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बन भाई ने चतुर्भाई की ओर से राम राम भाई। कार्यक्रम में आज हम जिक्र करेंगे अपने जो खेत क्यार में हम जो काम करने वाले औजार हैं या जो मशीनें हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि भाई किस तरह से उनकी देखभाल करनी है। लेकिन इस टाइम पे जिन भैया ने खेत खाली छोड़ रखे हैं तो भाई वो इस टाइम पे आप अपना आगे की जो आपने तैयारी कर रखी है, चाहे आपने उसमें धान की नर्सरी धान की बिजाई करनी है या बुआई करनी है और या कुछ और दालों वाली जो अगर आप किस्में बढ़िया जो किस्में हैं अरहर है डेंचा है तो आप वो लगा सकें। अगर डेंचा लगा रहे हो तो वो हरी खाद के रूप में अगर आप आ गए, आपने धान की फसल लेनी है तो आप उसमें उसकी कटाई करके बाद हो गए तो हरी खाद के रूप में हमने ज़्यादा खाद जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई आजकल हम देखने लग रहे हैं कि जितनी रासायनिक खाद दें हम दे रहे हैं और बिना देखे बिना खेत की मिट्टी की जांच कराए हम जो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका असर जो है वो हमारी सेहत के ऊपर पड़ता जा रहा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं। वो लाइलाज बीमारियां हमारा गढ़ पड़ जाए जिसके कारण हमने सारी उम्र दवाई खानी पड़ जाए और डॉक्टर साहिबान के क्लिनिक पर जाकर हमने खड़े रहना पड़े। तो इसलिए इनसे अब भी हम बच सकें क्योंकि क्या करें कि समय जब चेतावे है ना तो हमने संभल जाना चाहिए। तो अब भी समय है हमारे पास, जब भी आप खेत में जो रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं और तो उनमें हमने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवा के ही हमने रासायनिक खादों का प्रयोग करना। इसके साथ साथ जो दूसरी खादें हैं उनका भी अगर हम प्रयोग करें तो धीरे धीरे जो है खेत की जो मिट्टी है उसकी सेहत सुधर जाएगी और अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई पैदावार ज़्यादा करने के हिसाब में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें हैं तो पैदावार तो बढ़ जाएगी लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी खेत की मिट्टी है उसकी सेहत खराब हो जाएगी। तो इसलिए उस मिट्टी को बचाने के लिए ताकि मिट्टी जो है खेत की मिट्टी बंजर ना हो। अब रही बात कि भाई हमने जो अपने खेत क्यार में हम जो मर्द और औजार हैं मशीनें हैं उन मशीनों का रख रखाव करना भी जरूरी हो जाए, खास तौर पे क्योंकि वो क्या करें कि भाई जो अगर मर्द और मशीनें हैं उनका रख रखाव सही नहीं करा तो दिक्कत आ जाए। दिक्कत क्या हुआ है उन मज्जर लाग जाएगा किते पाइप टूट जाएगी और जब हमें एकदम अबड़ा तबड़ी में जब उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो जवाब दे जाएगी। इसलिए जब भी आप कोई भी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्योंकि मिट्टी अगर लगी रहेगी मशीनों में तो वो उस जगह जंग पकड़े पकड़ेगी। इसलिए जब भी आपने अपनी मशीनों को रखना है दो मांझ के बढ़िया सूत्रे डाल उस पर तेल लगा के और फिर धरना ढक के ताकि अगली बार जब हम उस मशीन का इस्तेमाल करें तो वो हमने सही मिल जाए। अब बात आवे कि भाई जो लेजर लैंड लेवलर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत जरूरी एक मशीन है और इस मशीन का काम ये है कि भाई

0: सारा खेत जो है एक सरिया करते हैं, यानी ये कहते हैं उबड़ खाबड़ ना रहे, ऊंचा नीचा ना रहे, क्योंकि जब हम खेत में पानी देंगे तो पानी जो है हर एक बीज तक, हर एक पौधे तक जाना चाहिए। अगर हर बीज तक, हर पौधे तक पानी नहीं गया तो वहां पौधा ना तो जमेगा और ना वहां कुछ पनपेगा, वहां खरपतवार पनप जाएगा। तो इसलिए पानी का, जब हम खेत में पानी देंगे तो ये जो मशीन है इससे पहले हमने खेत को समतल कर लेना है। और इस मशीन का, क्योंकि एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है या और बहुत बढ़िया तकनीक, जो हमारे साइंसदान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बहुत बढ़िया तकनीक, बहुत बढ़िया मशीन जो है वो, क्योंकि ये ट्रैक्टर के पीछे लगा कर और उसको हम ट्रैक्टर से ही नियंत्रित कर रहे हैं, उस कंट्रोल कर रहे हैं, और ताकि पूरा खेत एक सरिया हो जाए। और इसके लाभ यही है कि मशीन का जब हम उपयोग करते टाइम पे उसमें पानी को 30-40% तक बचा सके, और इसमें जो फसलें हैं उनको पूरे खेत में, जैसे कि हमने अभी जिक्र करा कि अंकुरण और बढ़ोतरी जो है एक समान होगी, यानी कि खेत में जब हम हमारी फसल तैयार होगी तो एक कोने तक लेगा दूसरे कोने तक अगर हम देखेंगे तो एक सरी जो है फसल हमने दिखेगी। खेत की जुताई के क्षेत्रफल में जो है 1-2% तक की बढ़ोतरी होगी। खेत जो है एक सरिया समतल होगा, जिससे बीज, खाद, खरपतवार नाशक जो भी हम दवाइयों का इस्तेमाल करें तो वो एक सरिया जो है वो खेत में फैल जाए। तेल की भी बचत होगी और फसल की पैदावार लगभग 15-20% तक की भी बढ़ोतरी हो जाएगी। एक मशीन और है बेड प्लांटर, और इस मशीन से हम बेड बनाने वाले जो फाड़े हैं, दो बेड बने हैं और उनके बीच में जो शावल प्रकार का जो फाड़ा लग गया रहे हैं, बेड पे 2-3 लाइन का जो फासला अगर हमने रखना तो उससे फसल हम बो सके। बीजों को ढकने के लिए, बेड को एक सरिया करने के लिए रोलर या फिर उसको फट्टा, जिसने हम कह दें फट्टा भी लगा के हम इस मशीन से काम कर सके। लाभ क्या है भाई इस मशीन के? लाभ यही है किसान भाइयों के, भाई जो बेड प्लांटर का हम प्रयोग करेंगे तो 25-40% तक की पानी की बचत हो जाएगी, क्योंकि हम देखने लग रहे हैं कि दिन पर दिन चोवा जो है वो तले बैठा जान लग रहा है और पानी दिन पर दिन नीचे जान लग रहा है। इसलिए हमने पानी की बचत बहुत जरूरी है। और खेत में बीज की मात्रा 15-20% कम लग गई, और खेत में जो डोड़ है उनको बनाने के लिए हमने मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन ने सारा काम कर देगी। और भाई बेड प्लांटर के उससे जब हम बिजाई करेंगे तो फसल का उत्पादन भी हमने कितना मिल जाएगा, 20-30%। एक और मशीन है जीरो टिलेज मशीन जिसने हम कह दे हैं, और या जो है मशीन उल्टी टी प्रकार के फाड़े जो है इसमें हुआ आप सब जानो, और इसमें जो है मिट्टी को बीज के जरूरत के अनुसार जो है वो हमने प्रयोग में लाना हुआ। अब जीरो टिलेज मशीन के लाभ के हैं, एक तो ड्रिल के प्रयोग से 20-30% तक पानी की बचत हो जाएगी, और इसका प्रयोग यानी कि जुताई में जब हम खेत न बावा हाँ तो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बिजाई समय पे आसान हो जाए। और भाई इसके प्रयोग से जो है जमीन को बिना इधर उधर करे और बिजाई हम कर सकें, और भाई जो खेत में अवशेष खड़े रहे उन अवशेषों को भी हमने ना तो काटने की जरूरत, वो पानी में जो है गड़क के और खेत की जो जैविक क्षमता है उसको बढ़ा दें। तो ये सब मशीनें हैं, इनका रख रखाव भी जरूरी है। भाइयों बिजाई का काम खत्म होने के बाद खाद और बिजाई के बक्सों की अच्छी तरह से हमने साफ कपड़े से सफाई करनी है, नहीं तो खाद जो है वो नमी के कारण साफट या गरारी में गरारी को जाम कर देगी। और मशीनों के प्रयोग से पहले या बाद में अच्छी तरह से हमने देखना है कि कोई नट बोल्ट को ढीला तो नहीं हो रहा है, अगर ढीला हो रहा हो तो उसमें कस दो। और बिजाई के बाद बीज की जो नालियों से मिट्टी और घास फूस जब लाग जाए फाड़े के ऊपर तो उनको भी हमने अच्छी तरह साफ कर लें ताकि फाड़े पे जंग ना लगे। मशीनों के काम से वापस आने के बाद जो आली मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी है, वो हमने सही उसमें जो है हमने वैसे तो कोशिश ये करें कि अपने ट्रैक्टर ने या मशीन ने ले जाकर जो एक बार प्रेशर वाला फुहारा है उससे साफ करा लें तो ठीक रह जाएगा। और मशीन के जितने भी भाग हैं उन्हें सुखा के अच्छी तरह नहीं भाई आले में ग्रीस ला दे तेल ला दे और हम सोचें कि भाई मरा काम हो गया, नहीं, वो मशीन ने अच्छी तरह साफ करके पानी नहीं लागे रहना चाहिए और उन पर अच्छी तरह ग्रीस या तेल ला के सुखा के और कहीं ऐसी जगह रखें जहां छात हो उसके नीचे अपने मशीनों को खड़ा करना है। और मशीनों क्योंकि भाई मशीन बहुत महंगी है, कुछ भाई ऐसा है कई बार जो रबड़ के रबड़ है जिन टायरों में या उनमें उनको उनके थोड़ा सा धरती से ऊपर करके और उसके नीचे कोई लकड़ी या उससे अगर हम खड़ा कर देंगे तो टायरों में जान बनी रह जाएगी। तो ये तो रही बात क्या की मशीनों के रखरखाव की जो कि बहुत ही जरूरी है। और वही मौसम की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 29 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो तापमान है वो अनुमान है कि अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। और वही कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो वही कल वीरवार है और कल हम अपने कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे चर्चा डेयरी और मछली पालन क्षेत्र में कौन कौन से अवसर हैं। और इसके साथ साथ धान की स्वस्थ प्योद तैयार करने के लिए कौन कौन सी हमने तकनीक अपनानी है। और इसके साथ साथ हम बातचीत अपने कार्यक्रम में कल करेंगे संजीवक खाद बनाने की विधि के बारे में। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की बातचीत। और अब समय हो रहा है क्या का मनोरंजन का, तो सुनवाते आपको एक रागनी सुनील दुजानिया और साथियों की आवाज में, आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: ओ कहूं जोड़ का

अब बात करें भयो खेत के अंदर एक और समस्या हो जाए, और वह समस्या क्या है, फसलों में दीमक की समस्या। कई बार यह समस्या इतनी भारी पड़ जाए है कि पूरी की पूरी जो फसल है उसको हम बिल्कुल अपनी आंखों से खत्म होते देखें, यानी कि फसल खेत के अंदर कुछ नहीं रहता। तो इसलिए दीमक की जो समस्या है, कई बार चाहे वो हम फलदार पौधे लगा रहे हैं, चाहे घर में ला लो, गोदामों में ला लो, खेत में ला लो, और फलदार पौधों की अगर बात करें, नींबू है, अंगूर, आम, अमरूद, चीकू, और सब्जियों की बात करें तो वही बैंगन, आलू, मिर्च, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, सरसों, इन फसलों में दीमक इतना प्रभावी है, इतना अपना असर दिखावा है कि बिल्कुल पौधा खड़ा दिखेगा लेकिन अगर कोई हवा चली तो वो उसी टाइम धराशायी हो जाएगा, यानी कि लेट जाएगा। कुछ भाई जो है अपना बाग भी लगा रहे हैं तो भाई बाग में भी ये समस्या आ सके है, ऐसा नहीं कि बाग में ये समस्या नहीं आएगी। चाहे आप कोई सा भी बाग लगा रहे हैं, दीमक की समस्या अगर जहां है तो वहां पे हम कुछ भी नहीं ले सकते, पौधा जो है पनपेगा नहीं। अगर पनप भी गया, पैदावार भी बढ़ा गया तो, या उसमें फुटाव भी आ गया तो पौधा जो है हवा चलेगी तो गिर जाएगा। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। और भाई दीमक ना तो कपड़ा छोड़ता, ना बांस छोड़ता, ना लाकड़ी छोड़ता, ना कागज छोड़ता, घर में जित भी इसने दिख गया ना, सोच लो एक बार जहां दीमक आ गई वहां से ये जाएगा नहीं, क्योंकि इनमें सेलुलोज हुआ है और सेलुलोज जो है ये खाव है। और दीमक जो है वो जमीन के अंदर रहकर फसलों की जमीन के अंदर ही खाकर और उसने ही अपना भोजन बनाता रहे और खाता रहे। खास तौर पे जो जड़े हैं फसलों की, जो जड़े हैं या जहां रेशेदार है वहां वो ज्यादा दीमक जो है पाया जाएगा और पौधों को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाओगा, हानि पहुंचाओगा, नुकसान ज्यादा करेगा। इसलिए जो बड़े बड़े पेड़ हैं या फसल है तो जो मिट्टी की ऊपरली परत है, जब ये कीड़े जो है, ये कीट जो है, दीमक जो है, जब अपना हमला करे है तो पहले मिट्टी की सुरंग बनावे है और फिर जो है ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाए भीतरे भीतर, यानी कि अपनी सुरंग खुद तैयार करके और तले तले जो है ऊपर तक अपना सुरंग बना ले, अपने ऊपर को माटी ढक ले और अंदर अंदर पेड़े ने चल जाए। कई जातियां हैं इनकी और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि लगभग जो है 10-10 साल से जीवित रहेगा, कई कई करोड़ों साल जो है वो जीवित रह जाए। और नियंत्रण की अगर बात करें तो हो सके तो बाम्बी, जहां इनकी दिखे दीमक की बाम्बी, उसने ढूंढ के खोद के और जो रानी होगी उसने मारो, उसने खत्म करो, चाहे वो दवाई तो मारो, चाहे यांत्रिक, चाहे कैसे भी उसको जो है खत्म कर दोगे तो दीमक जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्या जो है वो खड़ी ज्यों की त्यों रहे है कि ये खत्म नहीं होती। लेकिन इसको हम रोक सकें, रोक कैसे सकें, कि कच्ची गोबर की खाद वो ना डाले, क्योंकि अगर आपने कुरड़ी भी अगर ठानी है तो जो 6 महीने पुरानी है उस कुरड़ी ना ठाओ। अगर आप ताजा गोबर, खास तौर पे इन दिनों में अगर हम देखें तो कुछ भाई जो है अपना गाड़ी में या ट्रैक्टर में कच्ची गोबर की खाद भर के और थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सारे खेत में बखेरते चले जाएं, लेकिन वो नुकसान पहुंचा सके हैं। तो और दीमक को बुलावा हम खुद दे रहे हैं, तो इसलिए कच्ची गोबर की खाद का हम इस्तेमाल ना करें। और टाइम टाइम पे पानी में पानी लगाने से दीमक को हम रोक सकें।
और जहां भी अगर इनका प्रकोप हो रहा है ये आ गए हैं, तो जो लवेदोरे के खेत है उनको कटाई के बाद अवशेषों को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि डीमक उन्हें खाकर और अपना जीवन जो है वो बनाकर रखा है। और नीम की खड़ी की खाद भयो, ये बहुत ही जरूरी है। नीम की खड़ी की खाद हमने जुताई के टाइम पे हमने अगर डाल दें तो डीमक को हम नियंत्रण कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम रासायनिक उपचारों की बात करें तो रासायनिक उपचारों में बीज को हम अगर उपचारित कर लेंगे तो भी हम डीमक से काफ़ी हद तक अपना छुटकारा दे सकते हैं। और डीमक को हम बुलावा खुद ही दें हैं, क्योंकि भाई कच्ची गोबर की खाद इस्तेमाल करके या अपना जो खेत में कहीं कोई घास फूस है या लकड़ी है इकट्ठी करके छोड़ दे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें जिससे कि डीमक अपने आप को बढ़ावा ले सके। तो और इसके साथ साथ अगर हम एक और बात रखें कि भाई जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, कपास है, मूंगफली है, गन्ना है, अगर हमने इनकी बिजाई करनी है तो बिजाई के लिए हमने अलग अलग जो दवाइयां हैं, खास तौर पर अगर हम क्लोरोपायरीफास का इस्तेमाल करें 20 सीसी की ताकत वाली, और पानी जो है हमने हर उसके हिसाब से हमने डालना पड़ेगा कि चाहे हम गेहूं का अगर बीज ले रहे हैं तो उसके लिए हमने 150 मिलीलीटर क्विनल्फास 20 सीसी की ताकत वाली लेनी पड़ेगी, या फिर और भी जो दूसरी दवाइयां हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सके हैं। और या फिर मूंगफली के लिए जो है 1 किलोग्राम बीज के लिए 15 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास लेनी है 20 सीसी की ताकत वाली, जैसा कि अभी हमने जिक्र करा। और गन्ने के लिए, और वह गन्ने में बहुत ज़्यादा डीमक पाया जाए तो इसलिए गन्ने की जो पोरियां हैं उनको बिजाई के टाइम पे हमने 2.5 लीटर कैनाडोल 20 सीसी की ताकत वाली या फिर 8 किलोग्राम डेस्पॉन 10 ईसी की ताकत वाला है जो कि बाजार में मिल जाए। ये दवाई जो है 1 एकड़ के हिसाब से हम गन्ने का उपचार करके और 1 एकड़ में जो है हमने 2.5 लीटर क्लोरोपायरीफास या 20 सीसी की ताकत वाली ये दवाइयों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हम अपना डीमक की समस्या को सुलझा सकें। 600 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर फुहारे से जो क्विनल्फास है वह दवाई जो खोडे हैं उनमें पोरियों के ऊपर अगर छिड़क देंगे तो भी हम डीमक की समस्या को रोक सकें। फलदार पौधे हैं या दूसरे पौधे हैं उनमें जो खड्डे हैं उनमें 20 से 30 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास 20 सीसी की ताकत वाली उसको हमने पानी हमने इसमें लेना पड़ेगा 5 से 6 लीटर 5-6 लीटर पानी लेके एक बाल्टी लगभग जो है, और उसमें हमने क्लोरोपायरीफास मिला के जहाँ जहाँ भी हमने फलदार पौधे लगा रखे, फलदार पौधों में चाहे वो आपने अमरूद लगा रखा है, चाहे अनार लगा रखा है, कोई भी फलदार आपने बाग लगा रखा है, तो आप उसमें ये इन दवाइयों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो डीमक की जो समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकें। और ये घड़ी भी कह रही है कि चतुर्भाई कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाइयों से ले अनुमति, तो अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। अच्छा भाइयों, राम राम।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुननीय सारे बण भाइया ने एक बार फिर चतुर भाई की ओर से राम राम। भाई कार्यक्रम में ग्राम संसार में मनोरंजन भी करवाओगे, बातचीत भी करांगे, और आज का दिन क्यों, किस लिए, भाई आज का दिन क्या किस लिए मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पहले सुनते हैं एक संदेश, और ये संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।
0: तो ये तो सुना हमने संदेश, और पहले भाइयों करवाते हैं मनोरंजन। और मनोरंजन मैं हम आपको सुनाऊंगे एक रागनी। पहले सुनते हैं ये संदेश।

तो भैया ये तो सुनी आपने रागनी रणवीर सिंह बनवासनी और साथियों की आवाज़ में, और देशभक्ति रागनी में भाई बिल्कुल सही बात कि आज जो हम अपना स्वतंत्रता का जो आनंद ले रहे हैं वो इन्हीं शूरवीरों की बदौलत, इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत जो है वो हम सांस ले रहे हैं। और भैया गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में पशु पक्षी और इंसान सब गर्मी जो है वो झेल रहे हैं, और इसलिए इस गर्मी से बचने का भी हमने तरीका अपने पास होना चाहिए। क्योंकि गर्मी में अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सके है, इसलिए आप जब भी घर में से बाहर निकलें तो कोई कपड़ा अपने सिर के ऊपर जो है वो ज़रूर रखें, और इसके साथ साथ अपना पानी का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई पानी जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ ज़रूर लें, और घर से बाहर निकलते समय सिर पर टोपी कपड़ा या छतरी जो है ज़रूर रखें, हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनें, ORS का घोल खुद भी बना सके हैं, बाजार में बना बनाया भी मिल सके, नींबू पानी लस्सी और ताज़े फलों का जूस। ज़रूरी नहीं कि भाई दरिया होया, क्योंकि जूस हमेशा ताज़ा हमने लेना है, बच्चों को बुज़ुर्गों को और बीमार जो भी व्यक्ति है चाहे वो हमारे परिवार में है तो उसका विशेष ध्यान रखना है। धूप में काम करने वाले जो भी हैं वो टाइम टाइम पे भाई छाया में जाकर आराम जरूर करें, जो भी हमारे कामगार भाई हैं। शरीर में कमजोरी चक्कर या ज़्यादा प्यास महसूस हो तो तुरंत अपना नज़दीक का जो भी अपना अस्पताल है उसमें जाकर जरूर। और भाई हीट स्ट्रोक, इसके लक्षण जो है ये यो हैं कि तेज़ बुखार हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, ज़्यादा प्यास लग जाएगी, मुंह सूख जाएगा, कमज़ोरी हो जाएगी, थकान हो जाएगी, उल्टी पड़न लग जाएगी, और जिसने हम कहते हैं लू लग गई, तो लू लगने से हम ज़्यादा बीमार। करना के है जो हमने नहीं करना है ये तो हमने करना है, लेकिन जो नहीं करना है उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत कर ले भाई। दोपहर के 12 से

0: लेकर 3 बजे तक बिना बात धूप में ना तो बाहर आंड है ना फिर धूप में अपने घर तक बाहर निकलें। जो भी काम करना है 12 बजे तक पहले चाहे कितने गांव गमीने जाना है चाहे कितने दफ्तर में जाना है जहां भी जाना है अपना, क्योंकि 12 से 3 बजे तक का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। और आजकल आप देखने लग रहे हो कि 46, 47, 47 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो जान लाग रहा है। खाली पेट घर तक बाहर ना निकले, ज़्यादा गर्म और जो अपना हम गाड़ियां में बंद वाहन जिसने हम कहते हैं बच्चों को और बुजुर्गों को एकला ना छोड़ें, और ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा मेहनत ना करें। जो कुछ भाई जो है वो अपना धूप ने देखते नहीं कुछ करते नहीं तो ज़्यादा काम भी इस टाइम 12 से 3 के बीच में ना करें। रही बात कि भाई ज़्यादा गर्म चाय है कॉफ़ी है कोई नशीला पदार्थ है नशीला पेय पदार्थ है उसका इन दिनों में ज़्यादा सेवन ना करें। खराब और खुले में जो खान पान की जो चीज़ रखी हैं वो उनको हमने सेवन ना करें ना खाएं, क्योंकि अगर कटी फटी जो बाज़ार में या रेडी पे कुछ फल जो हैं वो रखे रहे हैं, कई भाई अपना रेडी पे पपीता धरा हो उसने अपना चाट जो है वो ले, लेकिन बिल्कुल ना ले, घर में ले आके और अच्छी तरह से धो कर और फिर फलों को इस्तेमाल करें। शरीर में तेज बुखार उल्टी बेहोशी सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो अपना इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने उससे गर्मी से लू से बच सकें। और भाई आप सुनते हैं एक संदेश और ये संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप तक।
1: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुन्द्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुन्द्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है जिससे जमीन समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
0: और भाई वो जैसा कि कार्यक्रम में हमने जिक्र करा था कि भाई दिन, आज का दिन क्यों मशहूर है, क्यों आज का दिन हम मनावे हैं, आज का दिन हम मनावे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में 20 मई। और इसका उद्देश्य यही है कि जो पर्यावरण है हमारा वो उसको संतुलन रखना है, खाद्य सुरक्षा और जो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए मधुमक्खियों और दूसरे परागणकों के महत्व के बारे

उन में काम आओ, खास तौर पर जो देसी दवाइयाँ हैं। बहुत काम की चीज़ जो है वो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन हमने इसको बचा के भी रखना है। कुछ भाई जो है मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भी कर रहे हैं, और वो व्यवसाय जब कर रहे हैं तो उसमें वो मधुमक्खियों की देखभाल भी उनको करनी चाहिए, और इसलिए आज का दिन जो है वो मधुमक्खी दिवस जो है वो हम मना सके हैं। इसमें हम योगदान ये दे सके हैं कि अपने बगीचे या बालकोनी में ऐसे पौधे लगाने हैं ताकि उनमें फूल उग जाए, फूल आवें, ताकि मधुमक्खियाँ उनकी उन्हें जो है खींच के और अपना पराग जो है वो लेके और शहद बना सके। हानिकारक जो कीटनाशक हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग हम कम करें, क्योंकि अगर उनका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो मधुमक्खियों की जान ले लेगा वो तो। और शहद जो है आप जानो कि भाई बहुत ज़रूरी है, और भाई क्या कह रहे हैं कि शहद के चक्कर में एक बार गादड़ ने ना उसमें अंगली दे दी थी शहद के छत्ते में, तो इसलिए बिना कारण जो है वो भी हमने नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना कारण किसी शहद तोड़न के बजाय उसमें अंगली नहीं देनी है, तो इसका भी बात ध्यान रखना। अब बात आ है भाई बुढ़ापे की, भाई नु कहूँगे आज की बात, भाई आज बुढ़ापे की बात क्यों कर रहे हो? भाई बुढ़ापा सब मार है, तीन अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, जवानी और बुढ़ापा। तो उस दौरान जो है उसमें बहुत सारी हमारा जो जीवन है, मानव जीवन है, उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कई समस्याएं आ जाएं, और इन समस्याओं में कई बार गठिया है, मधुमेह है, जिसने हम शुगर कह दे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय के रोग हैं, पाचन की समस्याएं हो जाए, पचता कोने, यादाश्त कमज़ोर हो जाए, फलाना था, डिमका था, ये था, वो था, उस टाइम पर कुछ नहीं याद रहता। तो भाई हमने अपने परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, और वो गुस्सा भी कर जाए तो उसको नज़रअंदाज करना है, उसके ऊपर ज़्यादा अमल नहीं करना, उनको ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी बात हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे पेड़ हैं जिनकी छाँव में हमने बचपन काटा है, जवानी काटी है, और आगे वाला जो समय है वो भी हम उन्हीं की छत्रछाया में, जिस दिन वो छत्रछाया हट गई तो सोच लो हमारे लिए दिक्कत हो जाए। तो या तो रही बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं उनकी देखभाल हमने खुद करनी है, ना कि पड़ोसी आकर करेगा, और अब के मनोरंजन का समय, तो आइए सुनते हैं हरियाणवी फिल्म चंद्रावल का ये गीत।

और भाई हरियाणवी फिल्म चंद्रावल के इस गीत के गिले आज का ग्राम संसार कार्यक्रम आया समाप्त। चतुर भाई ने दो इजाजत सब बन भाइयों ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म वीर जारा के इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।
1: No one serves you more.

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत आज आपने सुना जगजीत सिंह को। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी फिल्म है दीवाना। शाहरुख खान, दिव्या भारती और ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत आज हम इसी फिल्म के गाने सुनेंगे और जानेंगे इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इसी फिल्म के बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता साथियों, फिल्म दीवाना रिलीज हुई थी 1992 यानी कि 26 जून 1992 में। यह एक नाटकीय प्रेम कहानी थी जो कि ट्रायंगल लव स्टोरी के ऊपर आधारित थी। इसका निर्देशन किया था राज कंवर ने। मुख्य भूमिका में थे ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान। यह शाहरुख खान की पहली हिंदी फिल्म थी जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म की शुरुआत होती है काजल और रवि की प्रेम कहानी से होती है। काजल का जो किरदार है वो दिव्या भारती निभा रही हैं और रवि का किरदार निभा रहे हैं ऋषि कपूर। जो दिव्या भारती इसमें काजल होती हैं, एक प्रसिद्ध और चुलबुली पॉप सिंगर रवि की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि रवि के लालची चाचा हैं जो धनराज अमरीशपुरी धनराज की भूमिका निभा रहे हैं, उनको यह शादी पसंद नहीं है क्योंकि वह रवि की संपत्ति के वारिस बनना चाहते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। तो जो चाचा हैं वो रवि को रास्ते से हटाने के लिए गुंडों को काम पर रखते हैं जो रवि पर हमला करते हैं। रवि एक चट्टान से गिरकर लापता हो जाता है और उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। तो जब रवि को मरा हुआ मान लिया जाता है उसी वक्त दूसरे हीरो की फिल्म में एंट्री होती है। राजा और काजल की नई जिंदगी शुरू होती है। तो यहीं पे एक गाना तो बनता है साथियों, पहले ये गाना सुनते हैं फिर हम आगे की स्टोरी आपको बताएंगे।

काजल अपने पति की मौत के सदमे से टूट जाती है और एक विधवा के रूप में जीवन बिताने लगती है। उसकी सास, जो काजल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसे दूसरे शहर में ले जाती है और उसकी शादी एक अमीर और उत्साही युवक राजा सहाय, जो शाहरुख खान हैं, राजा सहाय की भूमिका में उनसे करवा देती है। राजा काजल से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन काजल अभी भी रवि की यादों में डूबी हुई है और राजा को अपने पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देती है।

काजल, जो रवि की यादों में अभी भी डूबी हुई है, राजा को अपने भावी पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देती है। इससे राजा का दिल टूट जाता है, लेकिन उसका प्यार सच्चा है तो वो धैर्यपूर्वक उसकी हाँ का इंतज़ार करता है और धीरे धीरे काजल का दिल जीतने में सफल हो जाता है। जब काजल और राजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले होते हैं, तभी रवि जिंदा वापस लौट आता है। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। रवि, जिसकी भूमिका ऋषि कपूर निभा रहे हैं, वो जिंदा वापस लौट आते हैं। पता चलता है कि रवि को एक दूरदराज के इलाके में बंदी बना लिया गया था और अब वह अपने परिवार से मिलने के लिए वापस आ गया है।

काजल रवि को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन अब वह असमंजस में है कि किसे चुने, अपने पहले प्यार रवि को या अपने वर्तमान पति राजा को। अब रवि को पता चलता है कि उसकी अनुपस्थिति में काजल की शादी हो चुकी है, तो वह खुशी खुशी काजल के जीवन से दूर जाने का फैसला करता है ताकि काजल और राजा अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकें। लेकिन तभी रवि का चाचा धनराज वहां पहुंचता है। उसे पता चलता है कि रवि जिंदा लौट आया है। वह रवि और राजा दोनों को मारने की योजना बनाता है। फिल्म के अंत में राजा और रवि मिलकर चाचा के गुंडों और धनराज को हरा देते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान रवि को गोली लग जाती है और राजा की बाहों में ही उसकी मौत हो जाती है। अंत में काजल और राजा एक हो जाते हैं और रवि के बलिदान को याद करते हैं।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज इतना ही। फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद होंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल

0: में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against

0: अभी आपने एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।
1: छाया गीत
2: लग जागने।
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंथ के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टुमाले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदेम मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातों के इस गीतों भरे सफर में आज आपकी हम सफर है आप सभी की रेडियो दोस्त योग माया। सभी श्रोता साथियों को तहे दिल से प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं आपका पहला फरमाइशी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आया सावन झूम के। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभू दयाल, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, और इसी गीत को सुनना चाहा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोता साथियों, आपका अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया है फजिल का पंजाब से। फरमाइश करता है, भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी, शालिनी, टिवानशी, वाणी, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार। कोटवा नारायणपुर से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार। दुबह नवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी देवी और प्रांजल राय। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना। एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म कुदरत से गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत है आर डी बर्मन का, गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

श्रोता साथियों, आइए फिर एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज़ को सुनते हैं। फिल्म है मेरा साया, संगीत है मदन मोहन का, गीत के बोल हैं राजा मेहंदी अली खान के। इस गीत को सुनना चाहा है पद्मा टाकिज, नेपाल नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि और अश्वनी शाह तथा मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और श्रीमती शीतल। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया गांधी चौक रोपर पंजाब से। फरमाइशकर्ता जुड़े हैं हमारे हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मिका विरक। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सर, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हैं नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुरंदीबाई बागड़ी। लालमाता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ही हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कहना, श्रीमती मनोहर बाई बागड़ी और प्रभुलाल बागड़ी। आप सब ने पसंद किया है फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इस गीत का संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म गमन से गीत। इस गीत को गाया है छाया गांगुली ने। संगीत है जयदेव का और गीत के बोल लिखे हैं मखदूम उद्दीन ने। इस गीत को सुनना चाहा है गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार दौदी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सबीर राही और मेहराज जहां। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू, राजेंद्र सिंह ओब्राय,

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान आकाश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को 101.4 MHz पर, कार्यक्रम चांदनी रातें, और मैं हूं आपके साथ आप सबकी रेडियो दोस्त योग माया। आइए बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की ओर और सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सफ़र से। इस गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और उन बोलों को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है भटिंडा रोड मंडी डबवाली से, हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया। धामदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम और बेबी वामिका तथा वाणी थांदी। अस्तपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवान, परवीन और अब्दुल्ला आजाद। आप सभी की फरमाइश पर मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

श्रोता साथियों, हमारे अगले फरमाइश करता हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तनवी बोर्ड और अंकित कांगड़ा। नेहरू पैठन से हैं डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और बेबी सिया। जलाना शहर से हैं सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष, गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। और शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल। मालटेकड़ी अमरावती से हैं प्रशांत ढेकरे, वर्षा और श्रद्धा ढेकरे। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी प्रवीण, बिट्टू साजदा और हिना कौसर। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत। फिल्म है लव मैरिज 1959। इस गीत का संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म काजल से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत है रवि का, गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के। इस गीत को सुनना चाहा है दादा बाबू रोड गिड्डी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन, नाइमा हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत। इसी गीत को सुनना चाहा है हिंदुस्तान रेडियो मित्र हैं बने बुजुर्ग फ्लेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से ही हैं हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोता साथियों, हमारे अगले फरमाइश करता हैं गांव गोंदर करनाल से हैं किरण पाल बुम्बक, तेज पाल, कृष्ण पाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न, वकील वाल्मीक और नीनाजी धड़े और स्वप्निल। निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, जुबैर, मुकरम, नोमान, जाकिर और फाजिल। चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, हंसमुखलाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार। गांव चौलहदा बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप सबने सुनना चाहा है केके की आवाज़ में एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म तुम मिले से। इस गीत का संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने, गीत के बोल हैं सैयद कादरी के।

श्रोता साथियों, फिल्म मुगलेआजम का एक गीत सुनने के लिए फरमाइश आई थी गांव सिलीकलां, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हैं जयसिंह काम्बोज, विजय सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह, और चमरोड़ी से हैं जयपाल धीमान और खुर्शीद। श्रोता साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चांदनी रातें अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद होंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organisation at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
3: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इसमें रात्रि के ठीक 11:10:15 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर अपने कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।